0: चुरा लिया है।
1: ये सटल फ्रॉम द 1973 मूवी यारो की भारत, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी विद चुरा लिया है तुमने दिल को। लेट्स एंजॉय द वॉइस ऑफ स्टेफन बेन फीचर लीरेट लियाम। Lijo George, and the song is